0: right, we got Survival Supermarket. Remember, they got three locations. One at Little Diamond, one at 173 Sherry Street, and Vizindian and Duncan Street. Contact them on 227-8506, 227-5286, or 609-2995. It's Survival Shopping Complex.
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।